0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ दी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
1: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा
0: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
4: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
3: याद रखो 9077-9733
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
3: हर कदम तुहाडे नाल
5: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
6: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश कर देने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
2: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
1: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी। वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।
3: एक अजिही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं है। ज़ूज विक्टोरिया मान नाल चिड़िया घर विच डायनासोर नूं पेश करता है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़िया घरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़िया घर, वेरीबी ओपन रेंज चिड़िया घर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलखण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। आज ही अपनी मुहिम की योजना बनाओ।

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा भी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकती, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
0: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੋਮਰਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ऑन रोड ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड ऑनर्स कंडीशन अप्लाई ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है तो टेंशन क्यों टू फोल्ड लेंडिंग डैंडिनोंग है ना होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील लो क्रेडिट स्कोर वेलकम कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-fold lending
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au

0: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
1: रेडियो हांजी 1674 एम दिस इज योर अपना आरजे पुनीत। समा हो चुका है अज दा विचार अज दी कहानी दा। कहानी कोई मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशनल नहीं है, लेकिन आस करते हैं कि पसंद जरूर आवेगी। अद्धी रात भांडे खड़कण दी आवाज, पानी दी चलदी टूटी, मां रसोई विच सी। तिन्ने नूहां पुत कादे सौ गए सन, पर वो जागदी सी। खुरे विच खिलरे जूठे भांडे, कम सांझे टब्बर दा सी, पर वो खुद ही सारी जिम्मेवारी समझदी सी। नालों नाल दुध दा पतीला गर्म हो रहा सी, अजे जाग भी लाना बाकी सी, तां जो सारे अगली सवेर ताज़ा दही खा सकन। अचानक कच दा गलास भुंजे जा डिगा, सदा सज्जे पैर दे अंगूठे ते। पीड़ हुई पर वो खुश सी, खड़ाक जू नहीं सी होया, अते गलास टुटनों भी बच गया, पर फिर भी सुत्ते पए जाग पए। वड्डे पुत्तर दे घरों घरवाली आखण लगी, अद्धी रात हो गई, इसनू नींदर नहीं पैंदी, ना आप सौंदी ना किसी होर नू सौण देंदी। विचले थां वाली बोली, हुण वेखणा सवेरे तड़के 4 बजे फिर तो खड़कड़ शुरू हो जानी, ना आप चैन लेना ना किसी होर नू चैन लैण देना। सब तो निक्की अपने घर वाले नू बोली, प्लीज जाके आप पखंड बंद करवाओ, अखे आथण वेले जूठे हुए अगली सवेर तक नहीं छड़ने चाहिए, बदशगनी होंदी है। छोटा गया पर उदों तक मां सब भांडे सांभ चुकी सी, दबे पैर ही वापस मुड़ाया। लक दा कुब, चेहरे दियां झुरड़ियां, ढिलकी हुई चमड़ी, जोड़ां दा दर्द, गोडियां दी तकलीफ, अखां दा मोतिया, सरफे दे दंद, मुड़के दे नाल भिजिया शरीर, पैरां दी लड़खराहट, तां वी दुध दा गर्म पतीला नंगे हत्थां नाल ही चुक लिया। इन नूं वेख्या घड़ी दियां सूईयां वी बरोबर हो गईयां। अपने मंजे वल नूं जाण लगी, फिर वापस परत आई, फ्रिज अंदरों भिंडियां कढ़ियां सारियां कट दित्तियां, अते फिर गंढे अते अदरक वी। फिर कुछ चेता आया, सराणे थल्ल्यों पोटली कढ़ी, अंदरों अंदाजे जहे नाल गोलियां कढ फक्का मार लिया, ते नाल पानी दे नाल अंदर लंघा गई। खोल खंघदे हुए घर वाले ने पुछया, आ गई है? आख्या तो सी अज ते रसोई विच कोई खास काम ही नहीं। मगरों पता नहीं नींदर पई के नहीं, पर तड़के अलार्म बाद विच वज्या, पर वह पहला ही जाग पई। पो माग दियां ठंडियां सवेरां नूं भी शायद ही कदे तत्ते पानी नाल नहाती होवे, आखे मैनू कड़ी ठंड लगती है, पर हरेक नूं वखरा गर्म पानी करके दिंदी। आप अखबार कदी ना पढ़दी, पर गेट लाग्यों चुकनी उसकी जिम्मेवारी सी। खुद सारी जिंदगी कदे चाह नहीं पीती, पर बाकियां दे लई प्यालियां ढक के जरूर रखती। कई बार सोचदा कि मां दे विषय ते लिखना, बोलना, सुनाउणा अते चर्चा करना यह बंद होना चाहिए। इस रिश्ते नू किसी कसौटी ते परखना भी पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। जो खुद ही एक कसौटी होवे, वो दूजी कसौटी ते किवें परखी जा सकती है? पर इस विषय ते भावें सारी जिंदगी गलबात करते रहिए, कदे नहीं मुकेगी। कहिंदे ने ना, गमां दी रात लम्मी है जां मेरे गीत लम्मे ने, ना भैड़ी रात मुकदी है ते ना ही मेरे गीत मुकदे ने। हाँ, सच एक होर गल, जे सब कुछ सुनदिया रोना आ जावे तल कोयो ना ते ना ही डक्या करे, खुल के रो लेना, पार हल्का हो जावेगा, सिर वजूद अते जमीर ते पिया होया। जे ज्योंदी जागदी मां कोल होवे तां जफ्फी विच लैके चुम लेना, अते जेकर पहलां ही रवानगी पा गई है तां उसदी सब तो प्यारी चीज़ नूं गल वकड़ी विच लैके उसनूं एक बार उच्ची सारी आवाज़ जरूर देना, जिथे भी होई

ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हां

0: BYD on roads on us. Conditions apply.
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप
2: डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर 15 सितंबर 2026 खत्म है, अजे मौके ज्यादा देर नहीं रहते। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हैं। ऑफर 15 सितंबर 2026 खत्म है।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुण टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओह वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
3: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग ज्वेलर्स परोसे दी निशानी
4: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au

0: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ दी
0: कुछ गल्ला कहनिया नहीं पेंदिया बस महसूस करनिया पेंदिया नी
1: एहो गल्या ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th September written and directed by Rakesh Dhawan love emotions adhi relationships di kahani bol paave na bol
3: Orbit Homes apne iradiyan vaang sirf imarat nahi balki apne har ek grahak layi banaunde ne unna de supnyan da ek majboot ghar house and land experts Orbit Homes apne 44 variyan te tajurbe naal thonu dinde ne 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock aj hi pahuncho Orbit Homes display centers ya कॉल करो हरपन चौहान नो 04332852 ते 04332802522 ते बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Zippy Music अते Music Time Productions पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
6: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच। हांजी।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ थोड़ा कोई हल करिए सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
3: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
2: फिर लवाइए कित्थों
3: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते

Focus. अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
5: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
6: हाय नी इन्ना सोहना मुंडा ओ वी गूंगा है
5: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
7: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी तू बोल नहीं सकदी ओने नहीं होना तेरे पीछे
5: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन
8: किचन का स्टाइल डल लगता बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
9: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au
10: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
11: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
10: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
11: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au
12: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी

बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
1: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकता है अते जीवन बदलन वाले मौकियां विच भी ए रोमांचक अते विहारक, संपूर्ण अते उत्साहपूर्ण हो सकदा है। ए उन्ना ही निखड़वां हो सकदा है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिज़म दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी वी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिज़म योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिज़म दी खोज करो। चिज़म बेहतरी लई RTO 0260।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डैजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी। पुराना

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुआडे नाल
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है ता टेंशन क्यों टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील लो क्रेडिट स्कोर वेलकम कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Lion 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Lion 8 डायनामिक FWD सिर्फ $55,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑन अस कंडीशन अप्लाई
3: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी
4: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू
3: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी देखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: शर्ता लागू।
1: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल।
2: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी, दिल दी लोड़ दी।
1: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां नी।
2: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना।
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: जिंदगी किवें कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनूं ओह चाहिदा।
1: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
6: हाँ जी हाँ।

ऑन रोड ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां, बस महसूस करनिया पैंदियां ने।
2: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
1: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
4: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश कर देने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
5: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
4: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
6: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
7: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
8: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
2: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077973।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तो अड्डे नाल।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल।
5: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी, दिल दी लोड़ हुंदी।
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां नी।
5: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वड के हो जाणा।
0: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: जिंदगी किवें कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending। ऑन रोड्स ऑनर कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990, ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लिए आज ही

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां, बस महसूस करनिया पैंदियां ने।
2: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
1: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
4: ते। किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-7748 ते। सिंह स्मैश Repair 8 Grace Way, Ravenhall।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Zippy Music अते Music Time Productions पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
5: मेरी जिंदगी चाहन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
4: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
6: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
7: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
8: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
7: फिर लवाइए किथों?
8: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
7: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थोनू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल,
5: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी, दिल दी लोड़ हुंदी।
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वड के हो जांदा।
4: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: जिंदगी किवें कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
4: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: $15,000 ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: ऑस्ट्रेलिया च अपना कार लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2 फोल्ड लेंडिंग।

0: फिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ते। Zippy Music अते Music Time Productions पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
2: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हाँ ते आखरी भी तू।
1: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वालों डायरेक्ट की थी पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु।
3: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नु आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
6: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ PR ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, AAT ਅਪੀਲਸ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, PR, US ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
7: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
8: ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।
9: ਔਨ ਰੋਡਸ ਆਨਰਸ ਕੈਂਪੇਨ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ BYD ਕਰ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਈਵ ਅਵੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। BYD C-Line 7 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ $54,990, BYD C-Line 8 ਡਾਇਨਾਮਿਕ FWD ਸਿਰਫ $56,990 ਤੇ BYD Shark 6 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ $57,900। ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਫਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ BYD ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ। BYD ਔਨ ਰੋਡਸ ਆਨਰਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

नजर बरछी पलक बल्लम ये बहुत तलवार है दोनों गजब ये कारखाना है जहाँ हथियार डलते

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: जनगणना दी रात 11 अगस्त मंगलवार सी। हर घर लई जनगणना पूरी करनी लाजमी है। जनगणना पूरी करन लई हाले भी समा है। census.abs.gov.au/punjabi ते जाओ जा 1800-181-2227 ते फोन करो। ऑस्ट्रेलियाई अंकड़ा ब्यूरो कैनबरा वल्लों अधिकारत।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्टगेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2 Fold Lending।

0: बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: Smith's Lane by Movekvich, अपने भविख की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वादू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है, अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvek.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 garewalvisasolutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
3: ¡Gracias!

0: खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी। चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत, एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। goldleafdairy.com।
3: Zippy Music अते Music Time Productions पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
4: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
3: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नूं।

0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई Rhythm Boys Entertainment presents बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ दी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
1: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगी मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनूं ओ चाहिदा है
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: सोना चाहिदा
4: भरोसा चाहिदा
3: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
5: हां जी हां

0: लाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 9077-9933
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान, बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
1: सन करंट वाले कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 थे।
0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंह स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430 123 300।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

जनाब अमीर मिनाई का शेर है। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। शायर कहते हैं कि इंसान जिंदगी में मुश्किल रास्तों से गुजर के ही कामयाबी हासिल करता है। सुर्खरू के माने हैं कामयाब होना, सक्सेसफुल। दूसरे लफ्जों में कहें तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इस बात की बहुत खूबसूरत मिसाल दी है शायर ने, मुलाहिज़ा फरमाएं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 Donsdale Street, Dandenong। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
3: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
2: हां जी रेडियो

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
2: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तो आड़े नाल
3: हां जी हां जी

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हां जी हां जी।

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगाह, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताय, कागद कलम

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

पाए जाए ए अंत न जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए केते।

तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। स्लोक पौन

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेती अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछज देशय के आभिज वेशय के आगाज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजम प्रवाह के धर्मक तुजा है के आशोक वर्णय के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदाम है गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज रहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सरबल गवन है, के हमेशल रवन है, तमामल तमीज है, समस्त अदीस है, परम परम ईस है, समस्त अदीस है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेख है, जमीन जुमा है, अमीक उमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुबास है, के अजब स्वरूप है।

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अपार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान जात बिचारे इते पै तो कांपे अंत को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत तार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज कपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वयं साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा अनंज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रासन वरिय पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करो रक्षा राख।

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा सुरु सुजंभव। आवरछा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखद है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न।

0: होवे तां सन्मुख सिख कोई जीव रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले आप छड सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुरु।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

माया अगन साबी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

पवित्र हिरदिया की जगदी जोत गुरता गदी ते सभाई मान सर्व मानवता दे रहबर पतित पावन भगत वशल करुणा निदान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जिया दी पावन निगी गोद दे अंदर जुड़ बैठे सत संगी जनों वड्डियां भागां वाले हो जो गुरदेव पातशाह जिया दी पावन तरस सदका इस महान स्थान दे दर्शन इशनान दी दात दे आनंद नूं मानदे आं। गुरद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल दे विच जुड़ के जो अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो पावन हुक्म सतगुरु जी ने बख्शिश कीते हन उना पावन बचना नू विचारण दा सुभाग आपां नू प्राप्त होया है। ये कृपा गुरु रामदास साहिब महाराज जिया दी है।

अपने पावन अस्थाना दे दर्शना दी दात, क्योंकि ए भी गुरु जे त्रुट के कृपा करके बख्श दे ता ए दात प्राप्त हुंदी है, अदरवाइज नहीं। गुरु ने कृपा कीती, इशनान दी दात, दर्शना दी दात, और फिर जड़ी सब तो वड्डी कृपा संगत दे विच जुड़ के सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो ना सगली शार। जो अज सतगुरु ने कृपा कीती है, साध संगत ये जड़े पावन बचन ने ना, जो अज आपने विचारने हन, ये धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 613 दे उपर ये पावन बचन सुभाई मानने। राग सूरठ है और इना बचना दे उचारण करता हन शहीदां दे सरताज, बाणी के बोहित मां भानी दे जाई सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जुन दे पातशाह। जड़े साडे पुरातन स्रोत ने ना, महापुरशां ने बहुत दयानतदारी कीती, जिहड़ियां रूहां परमेसर दे विच अभेद होईयां, फिर उन्हां परमेसर दे प्यारियां ने जदों बाणी दे अर्थ कीते ते बाणी दे अर्थ करदिआं ना आरंभ दे विच उत्थान का जरूर दर्ज कीता वी जिहड़े बचन ने पावन शब्द ने वो किस जगह दे उपर किस संदर्भ दे विच जिहड़े दतार जी ने उचारण कीते ने, ते जिहड़ा अज दा पवित्र बचन आपां ने विचारना है, इहदा जिहड़ा उत्थान का महापुरशां ने दर्ज कीता है ना भी सतगुरु ना इसे अस्थान दे उपर मंजी साहिब दे अस्थान दे उते, क्योंकि इत्थे ही बहुता सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जिया ने कृपा वरतौनी, बार अस्थान भी बनिया हुए भी इस अस्थान दे उपर ना सतगुरु सोने आसन ते सुभाई मान संगता आउंदियां ने, गुरु दे चरणां दे विच भावना नाल मत्था टेकदियां ने, कोई आके गुरु दे चरणां दे विच दात मंग रहे है, महाराज मैनू तन दा सुख चाहिदा, कोई मंगदा मन दा सुख, कोई कहिंदा महाराज त्रुठियो पुत्र दिओ, यही कुछ मंगदे आ ना जी आपां गुरु दे चरणां दे विचों। अज दे शब्द दे विच वी बचन आउणगे उथे ना, जदों आके संगतां ने सतगुरु जी दे कोल बेनतियां करनियां ते कई जग्यासु आउंदे सन, उन्होंने फिर अपनी जग्यासा ना सतगुरु जी दे चरणां दे विच व्यक्त करनी, बेनती करनी भी सचे पातशाह कृपा करो सानू दसो, कोई उपदेश रूप दे विच बचन दृढ़ कराओ, जां उन्होंने कोई अपने मन दा सवाल होना फिर वह सतगुरु जी दे चरणां दे विच करना, फिर बेनती करनी भी सचे पातशाह भी मन दे विच ये सवाल है। हर एक तरह का जड़ा सिख सी वह गुरु के चरणों के आता सी, बेनती करता सी, जिथे गुरु के चरणों के संसारक दाता मंगण वाले ने आना उथे नाम की दात भी बहुत मंगते सन, कई योजे आने जिन्हें आखना भी सतगुरु सिखी बख्शो, हर किसी की आपो अपनी मनोभावना। अज कोई जग्यासु गुरु चरणों के जुड़े उन्हें मत्था टेकिया जी, सतगुरु जी दे चरण कमलां दे उपर नमस्कार कीती, प्रेम दे विच भिज के ना गुरु अर्जुन देव महाराज जिया नू बेनती रूप विच बचन आखण लगे, कहिंदे भी सचे पातशाह कृपा करो जिहड़े तुहाडे दर घर दे सेवादार ने, जिहड़े तुहाडे संत जन ने, जिहड़े तुहाडे दर घरों तुहाडे दरों घरों वरसोए हुए साधु जन हन, सतगुरु सानू उन्हां दी बाबत फिर कुछ दसो भी उन्हां दा की कार्ज खेतर है, की करदे ने, ते किवें ओह

खीर संघ कहिंदे जिवें खीर संघ दुध दे नाल बारक है लीना। बच्चे का दुध दे नाल प्रेम हुंदा है, रोंदा होवे मां जो दुध चंगा दे रोंदा होया बच्चा चुप कर जांदा जी। हुण बच्चे का दुध दे नाल स्नेह है, दुध दे नाल उहदा प्यार बनिया होया ते नाल फिर महाराज जी ने बचन उचार दिते प्रभ संत ऐसे हितकारी। कहिंदे इसे तरह प्रभु दे जिहड़े संत ने ना हितकारी ने, वह भी मनुखता का भला करन वाले ने, वह भी मनुखता दे नाल प्रेम करन वाले। कहिंदे वह प्रेम पहला प्रभु दे नाल करदे ने फिर प्रभु की बनाई हुई उम्मत दे नाल। कहिंदे इह परमेसर वाहिगुरु जिया का जिहड़ा प्रेम है उन्होंने संतां का प्रेम, जिवें बच्चे का दुध नाल प्रेम है इसे तरह संत जना दा प्रभु दे नाल हित प्रेम बनिया।

0: ऐसी भूख जिहो जी किसी की भुख होवे, जिहो जी किसी की भुख होएगी, कहिंदे तैसी का पूरक, ओदा पूरक परमेश्वर वाहिगुरु फिर उसे तरीके नाल पूरा कर दिंदा है। जिहो जी किसी की भुख होएगी उसे तरीके दे नाल वाहिगुरु जी कृपा करदे हन, उहदी भुख नूं पूरिया कर दिंदे ने। कौन? वाहिगुरु सगल कटा का स्वामी, जिहड़े सारियां कटावां दे स्वामी वाहिगुरु हन।
1: नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी।
0: नानक धन गुरु अर्जुन देव महाराज, प्यास लगी दर्शन की, भी प्रभु जी मैनू तुहाडे दर्शना की प्यास लगी हुई है, अंतर जामी वाहिगुरु जी कि मैनू भी मिल पो, मेरे ते भी कर दियो कृपा। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत, दर मानदे ठाडे दरबार, तुद बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै। खोल के बार मैं तुहाडे दरवाजे ते खलोता, मैनू अपने चरणा दे विचो पावन दर्शना दी दात ओ बख्शिश करके तुसी निवाजना करो। इथों तक साध संगत अज दे जिहड़े पावन बचन उन्हां दी विचार, आओ लड़ीवार चल रही कथा, सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जीआं दे तुखारी राग दे बचन सुरत टिका दे विच विचारने करिए।
1: तुखारी महला पहला, ए मन मेरेआ तू समझ अचेत आणिआ राम।
0: तुखारी राग दे विच धन गुरु नानक साहिब जी दे ए पवित्र बचन, जो पातशाह जीआं दे पावन अंग 1112 दे उपर सुभाई मन हन। सतगुरु जी ना मन नूं मखातिब हुंदे आ, मन क्योंकि आपां पावन बाणी दे विच ना रोजाना बचन भी पढ़दे आ, भी ए मन मेरे आ तू सदा रहो हरनाले, मेरे मन तू हरी दे नाल जुड़ना कर, जुड़दा कोई नहीं, शरीर करके आपां बहुत बैठे आ, मन करके कोई बिरला हाजिर होएगा। मन नूं मखातिब हुंदे आ सतगुरु समझाउंदे ने, ए मन मेरे आ तू समझ, कहिंदे समझ अचेत, कहिंदे तू अचेत अवस्था दे विच विचरदा पिया है, ए आणिआ राम अणजाण मन, हे ए आणे मन तू राम वाहिगुरु जीआं दी पछाण।

0: मेरे मन तू अवगुणा नू छड़ दे, गुणा नू ग्रहण करिया कर। जदकि असी अवगुणा वाले पासे ज्यादा तुरदे हां जी, जीवन दे विच बहुतात मैल ही मैल असी इकट्ठी करी जा रहे हैं। चाहिदा तां इह सी ना वी बेनती कर दे, अवर पंचम एक जना क्यों राखो कर, वार मना मारा लूटा नीत नीत इस आग्या करी पुकार जना। बापू जी तुसी कृपा करके रख लियो सानू। कहिंदे मेरे मन अवगुणा नू छड़ के वाहिगुरु दे गुणा दे अंदर समाउणा हंकार।
1: बहु साध लुभाणे किरत कमाणे विछड़िया नहीं मिला।
0: कहिंदे एवें तू संसार दे पदार्थां दे स्वादां दे विच लुभाए मान होया पिया, किरत कमाणे अपनी किरत करके परमेसर दे चरणां दे विचों विछड़िया होया। ते जिहड़े किरत करके विछड़े हुंदे ने साध संगत उहनां दा कदी मिला।

वाहिगुरु जी ने कृपा की थी, पौन हवा पानी अग्नि बांधे प्रभु ने अपनी कृपा दे नाल इना सारिया नू बन्निया होया। तेज हवा चल पवे जी की होएगा, तूफान आ जाएगा। पानी जे प्रभु ने ना बन्निया होवे ते हड़ आ जाणगे, अग सुभा बदल ले ते चौंके तो अग वधदी वधदी कदों घर नू साड़ के राख कर दे पता ही नहीं लगेगा। प्रभु ने इना सारिया नू अपने सिस्टम दे विच अपने तरीके नाल बनना कीता। गुरखेल जगत दिखाया, सतगुरु जी ने कृपा की थी। ए जगत दा जड़ा खेल है ना बिस्मादक, वो अपनी कृपा नाल

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं

लीला रूप के श्रवण के लिए भी निकालिए अपने जीवन में। आज सोमवार के दिन भगवान शंकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रावण मास का समापन हुआ और आप सब पर भगवान शंकर की अपार कृपा और आशीर्वाद बना रहे, ऐसी दास भगवान से प्रार्थना करता है। पुण्य दर्शन में हम कर रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय से भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के दर्शन, जिसमें हम जान चुके हैं अभी तक श्लोक संख्या 19 से 22 तक कि भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। आदित्यों में भगवान सूर्य हैं, नक्षत्रों में चंद्र हैं और वेदों में साम वेद हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं, बल्कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बता रहे हैं। आज से 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व, तो अधिक समय ना लेते हुए जानते हैं अगली विभूतियों के बारे में इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं कि रुद्राणाम शंकराश्च अस्मि, अर्थात रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों में और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूं। यहां भगवान हमें समझा रहे हैं कि अलग अलग वर्गों में जो सबसे प्रमुख और विशेष है उसमें उनकी शक्ति की एक झलक दिखाई देती है। सबसे पहले भगवान कहते हैं रुद्रों में मैं शंकर हूं। शंकर भगवान, भगवान शिव का एक नाम है। भगवान शिव वे महान वैष्णव हैं और भगवान की सेवा में स्थित हैं। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो शंकर को रुद्रों में अपनी प्रमुख विभूति बताते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हरि नाम का जप करते हैं, राम का नाम लेते हैं। इससे हमें यह भी समझना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से महान व्यक्तियों को देखकर हमें उनके पद, शक्ति और गुणों का सम्मान करना चाहिए। उनके माध्यम से भगवान की व्यवस्था को समझना चाहिए कि ये जो गुण या विशेषता इस व्यक्ति में है वो किसी और के कारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कारण है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि पर्वतों में मेरु मैं हूं। पर्वत हमें क्या सिखाता है? पर्वत ऊंचा होता है किंतु साथ ही स्थिर भी होता है। उसके चारों ओर कितने मौसम बदलते रहते हैं, तेज हवाएं चलती रहती है, क्या पर्वत हिलता है? तस से मस होता है। आज हमारे जीवन में भी यह सीख बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी की परिस्थितियों में लगातार कितने बदलाव आते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी प्रशंसा मिलती है तो कभी आलोचना। किंतु अगर हमारी चेतना कृष्ण से जुड़ी है तो हमें पर्वत की तरह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान गीता के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में कौन सी विभूति छिपी है बताता हूं। अभी मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। गुरु का काम केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि अपने शिष्य को सही दिशा भी दिखाना होता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, युद्ध के महान सेनापति माने जाते हैं कार्तिकेय। यहां हमें नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। और फिर भगवान कहते हैं कि जलाशयों में मैं समुद्र हूं। विशाल, गहरा, असंख्य नदियां उसमें आकर मिलती हैं, किंतु समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। वो कभी अपनी सीमा लांघकर बाहर नहीं आता। हमारे जीवन में भी इच्छाएं लगातार आती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी इच्छा पैदा होने लगती है। अगर मन इच्छाओं के पीछे भागता रहे तो शांति कभी नहीं मिलती। इसीलिए हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखना चाहिए। भगवान की इन विभूतियों को जानकर हम सब अपने आसपास जब भी इनको देखें, कोई पर्वत देखे, समुद्र देखे, सूर्य देखे, चंद्रमा देखे, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही भक्ति की शुरुआत है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990, BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लिए आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस, कंडीशन अप्लाई।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते।
5: रिदम बॉय

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन,
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच। अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है, अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
7: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
6: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
8: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
6: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन,
2: स्मिथ्स लेन बाय मॉ।

बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।